स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी टेक्नोलॉजी के प्रभाव में परिवर्तन समाज को अलग

0: पास गई सुबह का और दिनों का अगर काम भी नहीं अभी तो एक बैठ के प्रदर्शन करना भी फिर काम पर इस तरफ थे उनके साइकिल दुकान फिर बात करी यह 1975 से शुरू कर दी 1975 से 1975 दीपक से तुम्हें बाहर एक दिन थे तुम्हारे काम कर दुकान में जब सात दस ग्यारह बारह दर्शन लागू थी कई दर्शन यह दुकान में बढ़ा तुम्हें लाइब्रेटी में करती करती बात करिए दूठो में बात कर दी पहले एक थोड़ा दूठो से लगा ढाई तीन बरस में दाम दूठो में बात करेगा बात करी
1: बात करिए अलग अलग नहीं ले आती अपने कार्यों में
0: हाँ अलग अलग एक सौ दुकान नहीं सर वो बात नहीं एक सौ दुकान पर लगा तो सर वो
1: बात पता चल जाएगा
0: हाँ लगभग तब ठीक ठीक चला हम तो ऐसे यही ठीक लागत बन जाती है फिर आप बस तक हम 5-7 साल का 2015 साल बस वो हो जाए महंगा लगभग उसमें तो 30,000 तो कम ले जाए फायदा
1: हाँ आपको महंगा लगभग व्यवस्थित कारण तो व्यवस्थित फायदा था 35-40 हजार 50,000 तो देखे जाए
0: कोई कोई मदद मिल जाए फिर व्यक्तिगत खर्च

यात्रा होगा कांकुरा जी का जर्नल मनुष्य विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास सुरक्षित प्राप्त हो और पुलिस संख्या लागू नजरी को स्वच्छ करने जानकारी दिवस

वस्तु की प्रथम अर्थात गलत मुख्य व्यक्ति व प्रथम कर्मचित अर्थात चित्र बनाना चरण का अष्टम की गीत के गीत।

संगीत और बातचीत का कथा लोकगीत मणिना जीवन और जीविका से जुड़ेगा। गीत

Thank you.
सुधार इसको दो दिन में शादी होता है, इसको सदा सब पैसा होता है आपका फिर जरा एक बच्चे रास्ते से पच्चीस से पचास हजार होता है चौदह सौ होता है

0: आंतरिक कतई जानी होनी चाहिए विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास रहोस अपना कार्य सुरक्षित रखोस कोई शंका लगे तुरंत नतीजे को सुरक्षित करने जानकारी दिखोस आपत्कालीन अवस्था में कहाँ कल करनी नेपाल प्रहरी एक सुंदर सुंदर वाक एघारह तेरह मानव बीच विक्रम बुद्ध को डिमो एघारह सतहत्तर तथा बाल हित माइल दस नौ आठ नौ तल करोस
1: सड़क नागरिक सुरक्षित समाज मानव बंदी संपर्क

नमस्कार, मेरा नाम यमुनाल सरकारी राष्ट्रीय नगर पालिका वार्ड नंबर 4 मौका अवश्य दिन वाला स्थानीय

पहलू तथा संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम बुलेटिन में स्वागत है। मई बिंदु चौधरी धानबारी में निर्मित रोग तथा कीड़ा का प्रकोप देखकर सीखना प्रति किसानों का नियमित अनुगमन का समय में जो व्यवस्थापन कर कृषि प्राथमिक सुधार नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नागसी अध्यापक सिफारिश अनुसार धान में प्रति सिंगल लागत यूरिया प्रयोग करने तथा वर्कर विकल्प का रूप में नानो झोल यूरिया 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर सबको प्रत्येक पिस्ता परीक्षा छिटो छिटो सिंगा जनाग्रीमा उपलब्ध सिंगल पांच कंटी में 24 घंटा क्षेत्रों में से पानी चाहिए प्राप्त धारा में किरा को कारण मूला समस्या हुई क्षेत्र नियमित अनुगमन करना किसान को नजीक कबारो संक्षेप समय में खेतों में तथा प्रत्येक आसपास एक पर सीखना प्रत्येक समय में व्यवस्थापन का अपना कृषि सलाह में प्रत्येक फेदी सिफारिश मात्रा में नाइट्रोजन का मल प्रसंग फसफरस और पोटास का संतुलित प्रयोग कर सुझाव देगा। रोग का प्रकोप बहन बसने सिफारिश करेगा ध्वसीनाशक बिरुवा विषादी प्रयोग को रसी मरुआ रोग में से बचाए यूरिया के पानी को ढेर में प्रयोग होने गए फसफरस और पोटास में सिफारिश मात्रा में प्रयोग कर गई रोग का लक्षण एक तरह से साइक्लोजोल और हेक्साकोना जोल जैसे सिफारिश के विषादी 10 से 12 दिन का फरक में प्रयोग करके कृषि सलाह बुलेटिन में धान के समूह पात्रा कीड़ा और खेती संकरण अलग अलग प्रत्येक टुकड़ा खाना पकड़ेगा तथा धान बात अर्थ इलाका से लड़का

0: ताल्पनिक अधिकारी आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास करोस अपना कार्य सुरक्षित रखोस और कोई शंका लगेगा तुरंत नजीकी को सुरक्षा करने लिए जानकारी दिखोस आपत्कालीन अवस्था में कहा कल गए नेपाल प्रहरी 100 व 113 मानव बेच विकल गुप्त पटुंग 177 तथा बाल हेल्पलाइन 10-9-8 को कल करोस
1: सुरक्षित समाज मानव बंदी संबंधित सेवा के साथ
0: हमें मिले वक्त रोक सकता मानव बेच विकल पूजा भारतीय यूनेस्को ग्रुप और ट्रांस इंटरनेशनल नेपाल को साझेदारी

साहब मेरे मेरी को संस्था तथा स्थानीय तहों से लाखों रूपया राहत कोष में जमा नगर पालिका पांच लाख ईसाई समाज बर्दिया का 4,20,000 उद्योग वाणिज्य संघरिया होटल अर्गनाइजेशन और महिला उद्यमी संघ प्रदेश समेत रूप में 1,60,000 श्री कल्पत्रु कृष्ण सार कृषि सहकारी संस्था 11,111 रूपया कोष में जमा मस्जिद तथा मुस्लिम समाज मोहम्मदपुर वेलफेयर ट्रस्ट 2,50,000 रूपया सहयोग ठाकुर बाबा नगर पालिका 1,55,000 नगर पालिका 8 का स्थानीय वासी 1,36,000 तथा बंगला मुखिया कृष्ण थाल माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थी आगमन ढाला खर्च कटा था 15,300 रूपया सहयोग करवाट जिला दर्शक को पालिका मशी जन प्रतिनिधि का 10 दिन को बराबर का रकम तथा करार कर्मचारी का पारिश्रमिक रकम हाथ कोषमा जमा करना निर्णय करवाट गांव तथा वडा तह मशी समेत राहत संकलन वृद्धि रहता तिहार जसिन नागरिक आगमन रकम जमा रकम जमा करना हो जिला प्रशासन कार्य में जानकारी रकम जमा करना करना जिला प्रशासन कार्य बर्दिया का प्रशासक अधिकृत लोक प्रशासक जानकारी बर्दियामा मानव अभिरत नरेन्द्र राव 21 दिन निःशुल्क सेतुमूलक तालिम संचालन शुरू हुआ बर्दिया अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र कार्योजना तथा आरएनओ डीसीएम नेपालका आर्थिक स्रोतमा समान निर्माण सम्बन्धी तालिम संचालन कैखेल हो बर्दिया नगरपालिका पाँचवरी नगरपालिका पाल बर्दिया नगरपालिका उपरियता गाउँपालिका भित्र बीच चुनाव पारदर्शिता मूलक महिला तथा पुरुष सहभागिता तालिममा सहभागितामा तालिम संचालन भएर बर्दिया अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रबाट चाहिँ नेता प्रसाद सरकोटा जानकारी दिनुभएको छ तालिम कुमार 13 गतेसम्म संचालन बिना आयोजक समयमा आत्मनिर्भर बनाइना उद्देश्य तालिमका आयोजना कैखेलको तालिमको उद्घाटन गर्दै महिला तालिम पालिका सात प्रवरादक्ष तथा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि राधेश्याम थारू शिक्षक आत्मनिर्भर बन्न अवसर प्रदान गर्न उद्देश्यले तालिम संचालन खर्गमा खुसी व्यक्त गर्दा उहाँ सहभागी हुन् लगनशील मेहनत प्रसन्न शिक्षक अधिक कति शिखर शिखर व्यवहारमा उतार्नमा जोडेरबाट शिखर चन्दमा फुक्र परिछ पर्न अवस्था विभिन्नपट्टि वा आदर्श थारू तालिमा प्राप्त शिखर व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर सहभागी गर्न हार्दिक गर्नुबाट आज बाँसकोटी नगरपालिका विशेष देखाइन कति आज हाम्रा पाँचवरी नगरपालिका आठ कौडा पनकौडीका

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण शाखा

बारिश रुक गया था। हनुमान केड़ा कुड़ी साग सब्जी फल फूल सहित फसल खाने पत्रदायक तंदुरुस्त बनाउँछ। पूरा खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म यसको पान चाहिँ खाउँ।

0: का समाचार।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार नेपाल में 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप को जोखिम में प्रस्तुति तथा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे हुए होता मोटू रोग को जोखिम बढ़ाने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवटा व्यक्ति दैनिक 5 ग्राम समय नून सेवन कर उपयुक्त होने सलाह दिया।
0: नियमित रूप में हिडुल शारीरिक व्यायाम ने मोटू स्वस्थ बनाने मदद कर
1: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तथा तनाव बाट मुक्त रहता मोटू रोग बाट बच्न सकिन्छ।
0: 40 वर्ष कटेपछि